0: Hours FM. 99.8 Hours FM. Don't stop, never give up.
1: That many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
5: I can see a massive black plume of smoke.
6: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
7: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
4: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
8: All right, no problem.
9: Life ko atakna nahi aata. To phir hum aur aap kyun ruke? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।

0: love, love.
1: I don't think there's any love lost between those two.
2: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
5: I'm going to send you the message again, and you can't see. If you can't do my birthday, you will get a surprise.

0: our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
1: We need a new jingle, yeah. What's better than that?
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver.

0: are listening to AWAS FM, the largest ethnic community radio station in Hampshire, broadcasting on 99.8 FM and DAB Channel 70. Everyone's talking about it.
1: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to AWAS FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new AWAS is here. AWAS FM on 99.8.
4: चलते हैं पाकिस्तान लाइन पर हैं अजमल शोबी.
5: अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम.
5: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
4: हां जी शुक्रिया.
5: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिस्टनर शो एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज एफ एम और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफ एम की जानिब से मेहरबानी तो आवाज एफ एम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत मिला जुला सा माहौल होता है जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्ञा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है और ओके बनता है
4: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये एक काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है
5: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को
4: थैंक यू वेरी मच
5: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिंदगी बखैर
4: थैंक यू वेरी मच जी टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय बाय
5: आई लव यू ऑल
6: हेलो my name is Hira Singh and I have my son birthday today and I for my son this song for Nusrat Fateh Ali Khan mahi ve tenu yaad kara Nusrat Fateh Ali Khan sahab thank you
7: Southampton's community radio AWAS FM

0: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: Hello, there's a big fire in the garden centre in Hammersley.
5: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
6: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
4: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
7: All right, no problem. We're on the way.
8: Chalte hai Pakistan. लाइन पर हैं अजमल शोबी
9: अस्सलाम वालेकुम
8: वालेकुम सलाम
9: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में
8: हां जी शुक्रिया
9: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूमात उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से मेहरबानी तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत है मिला जुला सा माहौल होता है जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यकजा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है और ओके बनता है
8: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये एक काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है
9: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को
8: थैंक यू वेरी मच
9: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिंदगी बखैर
8: थैंक यू वेरी मच जी टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय
9: आई लव यू ऑल

0: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
6: Lightning, the way you move is frightening.
7: Thunder!
6: Gotta knock on wood. See, we can do it all in this show. We can do it all in this show.

0: I know. How do we get Finnish listeners?
1: I don't know.
2: Hello, there's a big fire in the garden centre in Hammersley.
3: I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: लाइट हाउस इंटरनेशनल चर्च की जानिब से
8: हफ्तावार मसीही प्रोग्राम नूरे खुदा
9: हर जुमेरात सुबह 8 से 9 बजे
10: नूरे खुदा
11: हर वीरवार सवेरे 8 तो 9 बजे तक
12: नूरे खुदा
7: आवाज रेडियो 99.8 एफएम पर
13: नूरे खुदा।
14: इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं मसीही गीत और गजलें, मसीही शायरी और कलाम मुकद्दस की मीठी मीठी

0: Hop on, rewind, repeat. One wild ride. Retro Rickshaw every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: Northampton's Community Radio. Hours FM, 24 hours a day. Hours FM, online and on air.
1: Hello, there's a big fire in the Enter Garden Centre in Hammersworth.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसानात से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
6: Get your favorite song on the radio. Contact us now.

चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम,
1: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर्स को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से। मेहरबानी, तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ, बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
0: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी बखैर।
0: थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय,
1: आई लव यू ऑल।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: Get your favorite song on the radio. Contact us now.
6: This is your host from Norfolk, Alex Aller on Awaz Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in. Happy Friday on Awaz, 99.8 FM. Call me on our landline, 02381 9800 72. Finish your Friday with me.
7: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
8: Radio. The medium that's now large.
9: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
10: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre.
11: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
12: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, You also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
10: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
13: All right, no problem. We're on the way. Hello, Farmstead.
10: Hello, there's a big fire in the garden centre in Hamilton.
11: I can see a massive black plume of smoke.
14: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
13: How do you say it?
15: A was or a was?
16: Now, hands up, anybody out there, if you know what a gruffalo is. You do? Oh, that's good, because it's a kind of mythical creature with large paws and a lot of fur. And apparently it gets its name from being half a grizzly bear and half a buffalo.
17: That was Felix.
18: Southampton's Community Radio, Hours FM.

साथ किस्मत में लिखा होता तो क्या होता, किसी का साथ किस्मत में लिखा होता तो क्या होता, गवारों का भी दुनिया में खुदा होता तो क्या होता, गवारों का भी दुनिया।

0: Hi, my name's Jay. I listen to Avaaz Radio and I think you're doing a great job.
1: We are from Bournemouth, yeah. And we had Avaaz FM. And good luck.
2: Well, good luck to Avaaz FM. Jyoti Berry.
3: My name is Ramesh. I'm from Bournemouth. I'm very happy and I would like to support you having Avaaz FM in this area of Dorset and Hampshire, because there's nothing else here.
4: My name's Anu. I work on this radio. So really enjoy there. It's a very good community radio station. We support Punjabi. Say all the good luck to you and hope you grow like this radio.
5: Hi, I am Samreen and I listen to Avaaz Radio. I think the presenters are brilliant. It's really a good show and I think you guys are doing an amazing job.
6: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre. Now I'm going to
7: see a massive black column of smoke.
8: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
9: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
10: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
11: इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?
12: जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। दो रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।

0: I know. How do we get Finnish listeners?
1: I don't know.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: Hi, this is Anna Salman and you're tuning into Awaz FM. You can follow me on Instagram at annasalmandar.

0: ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ।
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden center in Harmondsville.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
5: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر۔ لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں۔ سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
6: How do you say it? آواز or a waz?
7: Assalamu alaikum, my name is Joshua, and can you please play something for me and my baba? My name is Joshua and my baba name is Amir.

0: Hours FM.
1: Hello, are you
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
3: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
3: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away.
6: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए hantsfire.gov.uk विजिट करें।
7: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's.
8: चलते हैं पाकिस्तान लाइन पर हैं अजमल शोभी।
9: अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम।
9: आपको वेलकम कहता हूँ मैं कराची पाकिस्तान में।
8: हाँ जी शुक्रिया।
9: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुँचाया है कि एक लिसनर्स को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से। मेहरबानी तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ। बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्ञा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
8: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
9: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज़ एफएम की टीम को।
8: थैंक यू वेरी मच।
9: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज़ एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे। इनके तमाम आरजेस को आप अपने

0: निम्बस की तरह पाएंगे, बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं। तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी बखैर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय,
0: आई लव यू ऑल।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: जब अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
0: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community Radio, we're all about here.

अच्छे दिन चढ़िया इतवार दा सोना। ये थी नसीम बेगम की आवाज, मूवी का नाम था दीना 1971 की रिलीज। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम। खुश आमदीद आपको करते हैं, वेलकम टू द शो। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। तो अगर आप अपना कुछ मनपसंद गीत सुनना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0238198072, 0238198072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 0778469144, 0778469144। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे हो तो इस वक्त फेसबुक लाइव पे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। खुश आमदीद करते हैं शाम्स यूसुफ साहब, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है फेसबुक लाइव पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो शाम साहब, खास आपके लिए ये अगला गीत आपके लिए पेश करता हूँ। यह है आवाज़ मलका तरन्नम मैडम नूरजहान की, अभी ढूंढ रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत, एंजॉय कीजिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में।

मलकतवना मैडम नू जहान की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। खुश आमदीद हम करते हैं, वेलकम टू द शो आवाज ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। तो समीन, आप अगर स्टूडियो को कॉल करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381-980072, 02381-980072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07-84-691-440, 07-84-691-440। आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। तो समीन, खुश आमदीद हम करते हैं जेनिफर रोड्रिग्स, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक लाइव पर। और जेनिफर रोड्रिग्स, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस का। तो लीजिए, आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत। मूवी का नाम है भोपाली, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत। था यकीन कि आएगी ये रातें कभी। सुरैया भोपाली मूवी से ये प्यारा सा गीत।

था यकीन ये क्या आएगी ये रातें कभी। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में। तो लीजिए आप हमें सुन सकते हैं www.awazofm.co.uk पर, और इसके अलावा इस वक्त अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक लाइव पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो लीजिए पेश करता हूँ आपके लिए अगला गीत, और शम्स यूसुफ साई थैंक यू सो मच आपने मैसेज किया, और इस वक्त आप सुन रहे हैं मर्दान पाकिस्तान से। तो आप आपके साथ है आपके बेटे दानियाल और अब्दुल अब्दुल, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, और वेलकम टू द शो दानियाल, वेलकम टू द शो अब्दुल। और इसके साथ साथ आपकी वाइफ समीना वो भी सुन रहे हैं। तो लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत, पश्तो का गीत है। पश्तो हमें आती नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा।

0: What's the movie say? Tobak Zama Kanun. I hope I said that right. तो ये थे शम्स यूसुफ़ साहब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपने पसंद किया होगा। तो इसके साथ ही चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8।
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@oursfm.co.uk.
4: Hello, there's a big fire in the end of Garden Centre in Hammersworth. I can see a massive black plume of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं, तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर, हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं, बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
6: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread... This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela,

0: सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: वेलकम बैक टू आवाज एफएम की म्यूचुअल रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम। स्टूडियो में कॉन्टैक्ट कीजिए 02381980072 आपके डेडिकेशन और रिक्वेस्ट के लिए 02381980072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक में हो तो इस वक्त फेसबुक लाइव पर भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। समय चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए पेश करता हूँ अगला गीत। और अगला गीत आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत, मूवी का नाम है दिल मेरा धड़कन तेरी और अहमद रुश्दी की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत किया है। प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजर आना कबूल कर लो।

0: रुष्टि की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना।
1: किया है जो
0: प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजर आना, कबूल कर लो। मूवी का नाम था दिल मेरा धड़कन तेरी। अहमद रुश्दी की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आवाज ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। तो लीजिए समिन, अहमद रुश्दी की आवाज हमने सुन ली, तो लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ मसूद वाना की आवाज। और मसूद वाना की आवाज से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत। मूवी का नाम है बढ़िया मेला, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत। आशकां तो सोना मुखरा लुकान ले, सजना ने बूहे अके चिक तान ले। एंजॉय कीजिए।

मसूद राणा की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। मूवी का नाम था बरिया मेला। आज का तो सोना मुखरा लुकान लई, सज्जना ने बुहया के चिकतान लई। अब सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ 1947 से लेकर 1990s तक प्यारे से पाकिस्तानी नगमे। कुछ आपके पसंद, कुछ मेरे पसंद, कुछ हम सबके पसंद, कुछ सुने हुए गीत, कुछ अनसुने हुए गीत, और कुछ यादगार गीत। और जहाँ के यादगार गीत की बात करते हैं, तो लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ एक प्यारा सा यादगार गीत। मूवी का नाम है बाबुल दावेरा, और नसीम बेगम की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत आपके लिए पेश करता हूँ। एंजॉय कीजिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

0: ताकि सोई से रामंदा जिसे दीवानी मोहब्बत की ताकि
1: नसीम बेगम की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। मम्मी का नाम था बाबुलदा बेरा। आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत, जहां की आपके लिए पेश करता हूं पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। और अगर आप कुछ मनपसंद गीत सुनना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 और इसके अलावा आप स्टूडियो में व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914440। आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अब हम चलते हैं मूवी 1956 की मूवी चनमाही, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ज़ुबैदा खानम और सलीम रजा की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत साढ़े अंग अंग विच प्यार ने।

सदे अंग अंग उच प्यार ने पिंगा पाया ने जुबैदा खानम और सलीम रजा की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। स्टूडियो का फोन नंबर हमेशा की तरह 02381980072, 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040। आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर 99.8 FM। लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ अगला गीत, और ये गीत हमें लेके चलेगा ब्रेक की तरफ। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, सुनते रहिए आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। चलते हैं मूवी का नाम खुशैया, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत मलकतरानम मैडम नूरजहान की आवाज से। तो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

मैं तेरे संग आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। मूवी का नाम था तामन और चिंगारी, हमारे दिल से मत खेलो। अब सुन रहे हैं आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ 1947 से लेकर 1990s तक प्यारे से नकमे पाकिस्तानी सिनेमा से। चलते हैं अगले गीत की तरफ और एक बार फिर आपके लिए पेश करता हूँ मैडम नूरजहान की आवाज से, मलका तराना मैडम नूरजहान की आवाज से, आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM।

0: आपका रेडियो आपके शहर में आवाज FM
1: How do you say it? A was or a was?
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंग रंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ
3: Welcome back to Awaaz FM Community Radio. Aapki Awaaz, aapke shehar mein 99.8 FM aur duniya par aap hame sun rahe hain awaazfm.co.uk par. Southampton aur uske ird gird ilaqon mein aap hame sun rahe hain 99.8 FM. Awaaz FM Community Radio, aapki Awaaz, aapke shehar mein 99.8 FM. स्टूडियो का फोन नंबर हमेशा की तरह 02381980072 दैट 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400 दैट 07786914400 और इस वक्त अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक लाइव पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट मुझे फेसबुक पर भी आप भेज सकते हैं जैसे कि निगा अली थैंक यू सो मच आपने मैसेज भेजा है और आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत नसीम बेगम की आवाज़ से तो लीजिए आपके लिए आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट नसीम बेगम की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत जिरा दिल टूट जाए लीजिए Enjoy. मूवी का नाम है मेरा वीर

जिदे गल मुक जाए जिनू चोट लगे वो जाने। नसीम बेगम की आवाज़ से ये गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। और निकाली थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया है ये प्यारा सा गीत। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ प्यारे से पाकिस्तानी नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। कुछ आपके पसंद, कुछ मेरे पसंद, कुछ हम सब के पसंद, कुछ यादगार गीत, कुछ मनपसंद गीत। तो लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ एक अपना फेवरेट गीत। मूवी का नाम था चले मूवी का नाम आपके लिए ढूंढ कर बताता हूँ, लेकिन ये है मेहदी हसन की आवाज़, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है।

मेहंदी हसन की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना। मूवी का नाम था सलाखें, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। समय चलते हैं अगले गीत की तरफ और ये है रिक्वेस्ट है जावेद साहब। थैंक यू सो मच जावेद राजा साहब, आप हमें मैसेज कर रहे हैं फेसबुक लाइव पर, तो आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत, और ये गीत हमें लेके चलेगा ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के उस पर आपके आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। तो लीजिए 1955 की तरफ हम चलते हैं, मूवी का नाम है पतन, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ जुबैदा खानम और इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत।

असिला के तौर निभाने मूवी का नाम था किस्मत, और इसी मूवी से आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आवाज ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करता हूँ 1947 से लेकर 1990s तक प्यारे से पाकिस्तानी नगमे, कुछ आपके पसंद, कुछ मेरे पसंद, कुछ हम सबके पसंद, कुछ यादगार गीत और कुछ अनसुने हुए गीत। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने, आपके शुरू से अगर आप प्रोग्राम का साथ दिया तो उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और अगर आपका अपना कुछ डेडिकेशन और रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02383-81-98-0072। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07 8 4 6 9 1 4 0 07 8 4 6 9 1 4 0 आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। चलते हैं अगले गीत की तरफ। और खान साहब, आरिफ खान साहब, आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत। थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया है फेसबुक लाइव पर और आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत। ये गीत मैंने पहले सुना नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये गीत वही है जो कि आपने फरमाइश किया है। तो लीजिए, मूवी का नाम है मोरनी और इनायत हुसैन भट्टी साहब और जुबैदा खानम की आवाज़ से ये गीत है वाह पे वाह।

वहाँ पे वहाँ जाने के तक जा। आयना सेन भट्टी साहब और ज़ुबैदा खानम की आवाज़ से ये गीत आपने सुना और मूवी का नाम था मोरनी। और आरिफ खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया ये गीत। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप ढूंढ के लेके आते हो, लेकिन बहुत ही मज़ेदार गीत था। थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया ये गीत। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ये गीत एंजॉय किया होगा। हम सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 12 बजे तक। किस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करता हूं 1947 से लेकर 1990s तक प्यारे से पाकिस्तानी नगमे, कुछ आपके पसंद, कुछ मेरे पसंद और कुछ हम सब लोगों के पसंद, कुछ यादगार गीत, कुछ मनपसंद गीत और कुछ सुने हुए गीत, कुछ अनसुने हुए गीत और कुछ गोल्डन जुबली गीट्स, कुछ ऐसे गीत जो कि बहुत ही ज़्यादा यादगार होते हैं। जैसे कि ये अगला गीत आपके लिए जो पेश कर रहा हूँ, मलका तराना मैडम नूरजहान की आवाज़, मूवी का नाम है मुखरा। जैसे कि ये अगला गीत आपके लिए जो पेश कर रहा हूँ, मलका तराना मैडम नूरजहान की आवाज़, मूवी का नाम है

मल कतरा नम की आवाज मैडम नूजान की आवाज से ये गीत आपने सुना मुंडे या दुपट्टा छड़ मेरा। मूवी का नाम था मुखरा और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम। मिस साइमा थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत। बहुत से रिक्वेस्ट आ जा रहे हैं, थैंक यू सो मच सबका जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फेसबुक लाइव पर भी और व्हाट्सएप पे, थैंक यू सो मच। और अगर आप भी भेजना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0238198072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए अगर आप मैसेज भेजना चाहें, यह है स्टूडियो का व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप नंबर है 0778469140 और इसके अलावा आप जो है फेसबुक लाइव पर भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिस साइमा थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत, तो लीजिए आपके पसंद मुंडा शहर लाहौर का।

मुंडा शहर लाहौर था। मिस फाइमा थैंक यू सो मच आपने रिक्वेस्ट किया ये गीत और बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको भी पसंद आया होगा। आवाज़ बैंक में टू रेडियो, आपके आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे, और इसी के साथ अगर आपने कुछ मनपसंद गीत सुना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 पर, 02381980072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400, 07786914400। और इस वक्त आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक लाइव पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। तो अब हम चलते हैं 1966 की तरफ, और 1966 की तरफ हम चलते हैं मूवी पायल की चंकार, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत सलीम रजा की आवाज़ से, हुसन को चांद जवानी।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community Radio, we're all about here.
2: Welcome back to Awaaz FM Community Radio. आपके आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk. मैं हूं आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 12 बजे तक. उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे. और चलते हैं अगले गीत की तरफ. और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूं मूवी का नाम है हीर, 1955 की रिलीज. और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूं ये अगला गीत, सज्जान के मीठे लई अखबे. इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ और साथ है जुबैदा खानम.

सुनो लला की आवाज से ये प्यारा सा गीत आपने सुना, मौसम बहार का है। मूवी का नाम था आसरा। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच शजाय साहब, आपने रिक्वेस्ट किया है ये गीत और बहुत ही मजा आया सुनकर। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। आवाज ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। तो लीजिए कुछ दो चार गीत और है, रिक्वेस्ट है और कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए। लेकिन चलते हैं अब ये अगले गीत की तरफ। और इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत। मूवी का नाम है विचरे साथी और बोल है कुछ सो गई किस्मत मेरी।

सो गई किस्मत मेरी। मूवी का नाम था विचरा साथी। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली, और ये था आज का प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी की। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन, योर रिक्वेस्ट और जो कॉमेंट्स आपने किए हैं फेसबुक लाइव और व्हाट्सएप के जरिए। तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि स्टूडियो का फ़ोन नंबर 02381980072, हमारे सब प्रोग्राम्स का एक ही नंबर होता है 02381980072। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम टुडे। तो नदीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने कहा कि आज का प्रोग्राम में मलकत रनम मैडम नूरजान के गीत ज़्यादा ही लग रहे हैं, तो आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगला गीत गाएगी दुनिया गीत मेरे मलकत रनम मैडम जहान की आवाज से। तो इसी के साथ अली को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
4: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
4: Hello, there's a big fire in the garden centre in Hammersmith.
6: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए इस जून एक तब्दीली लाएं फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए hantsfire.gov.uk विजिट करें
5: In
7: Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
8: Radio, the medium that's now large.
9: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.

0: हम भी तेरे, छोड़ूंगा तेरा साथ कभी ना।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
3: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver.

0: கை தள்ள கிடைக்கும்.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Harmondsville.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज, जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमर

0: hurry up, please.
1: All right, no problem. We're on the way.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज एफएम के साथ

0: आवाज करियोकी क्लब अब हर बुधवार को सुबह 8 से 10 बजे तक रिपीट किया जाता है। जो इस प्रोग्राम को सुनने वाले साउथ एशिया यानी इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं, वो अब दिन के दौरान आवाज करियोकी क्लब सुनकर इसका लुत्फ ले सकते हैं। तो याद रखिए, अब आवाज करियोकी क्लब हर बुधवार को सुबह 8 बजे यूके टाइम के मुताबिक रिपीट किया जाता है।
1: जी हाँ, यह है आवाज एफएम और आप हमें सुन रहे हैं 99.8 एफएम साउथहैम्पटन से। दुनिया भर में इंटरनेट पर अपने स्मार्टफोन पे आप हमें सुनते हैं। अगर आप रहते हैं साउथहैम्पशायर, विनचेस्टर या पोर्टसमाउथ के इर्द गिर्द के इलाकों में, तो आप हमें डीएबी पे भी सुन सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और अभी जो प्यारा सा गीत आपने सुना, जी हाँ, ये थे दनिश बेग और ऑल द वे फ्रॉम मुंबई उन्होंने अपनी प्यारी सी आवाज़ हम तक पहुँचाई। तो आप हम सुनते हैं सरिता रहमान को, जो कि कोलकाता की रहने वाली हैं। उनका गीत है सारी सारी रात तेरी याद सताए। बहुत ही प्यारा सा नगमा है, इंजॉय कीजिएगा।

दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM। बेशक ये है आवाज FM और मैं हूँ सीमा सरगम। हमारा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब, जी हाँ, आप ही के खूबसूरत नगमों का ये प्रोग्राम होता है हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, और रिपीट आप सुनते हैं वेनसडे मॉर्निंग 8 AM। बने रहिए हमारे साथ। और जो प्यारी सी आवाज़ अभी आपने सुनी, ये थी सारिथा रहमान ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, और उनका गीत भी बहुत ही प्यारा था, सारी सारी रात तेरी याद सताए, स्पेशली जब उसमें तबले की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही थी तो बहुत अच्छा लगा। आशीष शर्मा जी की आवाज़ में एक गीत सुनिए अब, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं और उनका गीत है तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। इंजॉय कीजिएगा।

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: ये आवाज़ एफएम है, मैं उसी में सरगम। और जी हाँ, आप हमें सुन रहे हैं 99.8 एफएम साउथहैम्पटन से और दुनिया भर में इंटरनेट पे सुनते हैं। और इसके साथ आपको रिपीट प्रोग्राम भी दिया जाता है और जो कि वेनसडे होता है 8 AM इन द मॉर्निंग। और आप तो अपने मुल्कों में अपने ही टाइम के मुताबिक सुनते हैं ना, तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। लिसन बैक की फैसिलिटीज़ है अगर आपने मिस कर दिया तो। बने रहिए हमारे साथ, हमारा प्रोग्राम आवाज़ कैरियोकी क्लब। जी हाँ, ये आप ही का प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष शर्मा ने बहुत ही खूबसूरत सा नगमा भेजा था हमें, तुमने मुझे देखा। तो ये थे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। और अब हम सुनते हैं चंद्र सदारंगनी को, जो कि बली सेंट्रल अमेरिका से हैं और हमेशा प्यारे प्यारे से नगमे हम तक पहुँचाते हैं। ये भी बहुत प्यारा गीत है, दीवाने का नाम तो पूछो। चले पूछते हैं।

0: How do you say it? A was or a was?
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और हमारा प्रोग्राम आवाज़ करियोकी क्लब, आपके गाए हुए गीतों का ये प्रोग्राम होता है हर संडे 6 बजे से लेके शाम 8 बजे। मैं हूँ सीमा सरगम, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त। और जो नगमा भी आपने सुना, जी हाँ, ये थे चंद्रू सदारंग ने, ऑल द वे फ्रॉम पुलिस सेंट्रल अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मदन मरदेसी को हम इन्वाइट करते हैं, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। और उनका गीत है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तो ये प्यारा सा गीत हम मिलके एंजॉय करते हैं।

0: I'm John Denham. You're listening to Hours FM.
1: Southampton's community radio, Hours FM.
2: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से। दुनिया भर में इंटरनेट पर अपने स्मार्टफोन पे आप सुनते हैं, और अगर आप भी एक अच्छे सिंगर हैं तो हम तक अपने गीत पहुंचा सकते हैं। ये है यूके का व्हाट्सएप का नंबर 07784691440। MP3 पे रिकॉर्डिंग करके अच्छे से हम तक पहुंचाइए और हम ज़रूर पेश करेंगे अगर वाकई में वो इस काबिल हुए तो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो गीत अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा गीत था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, ये थे मदन परदेसी ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। तो अब हम सुनने जा रहे हैं राजेश काकोनी जी को, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं, और उनका गीत है नाम गुम जाएगा।

0: To listen back to shows on Awaaz FM, simply go to our podcast page on the website at www.awaazfm.co.uk/podcast. You can download any show and listen to it again. These will stay on the website for 14 days. Alternatively, listeners can call the studio on 02381 980072 and press option 4, and you can record your dedication or request. We will then download your voice message, edit it, and then add the requested song and play out during our overnight service.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM, मैं हुसैमा सरगम। हमारा प्रोग्राम आवाज़ करियर की क्लब, आप ही के गाए हुए गीतों का ये प्रोग्राम होता है हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो गीत अभी आपने सुना राजेश काकवानी जी की आवाज़ में था, ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, तो अब हम सुनते हैं कमलेश पैरी को, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, और उनका गीत है अगर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच होंगे। तो एंजॉय कीजिए।

0: This is Natalie DeLuccio, and keep listening to Awaaz FM.
1: जी हाँ, ये है 99.8 FM Southampton और हमारा प्रोग्राम है आवाज़ कैरियोकी क्लब। तो जी हाँ, अभी जो गीत आपने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत था कमलेश पैरी की आवाज़ में, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो चलिए अभी संजय भाटिया को हम इनवाइट करते हैं। तो उनका गीत है तुम साथ हो जब अपने, ये प्यारा सा गीत हम मिलके एंजॉय करते हैं।

0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Ours FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और हमारा प्रोग्राम है आवाज़ कैरियोकी क्लब, और आप इसे सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से. हमारा प्रोग्राम हर संडे मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक. तो चलिए, जो गीत अभी आपने सुना, जी हाँ, ये थे अशोक तकवानी जी. ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप. और अब हम सुनते हैं प्रदीप अरोरा को, जो कि मखम कैनेडा के रहने वाले हैं, और उनका गीत है तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो. ये प्यारा सा गीत हम मिलके एंजॉय करते हैं.

0: every Saturday at 5. It's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और आप ही का प्रोग्राम आवाज़ Karaoke Club। आपके गाए गीत होते हैं इसमें और दुनिया भर तक आपकी आवाज़ पहुंचती है आवाज़ FM के माध्यम से, जो कि 99.8 FM Southampton से ऑन एयर होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो गीत अभी आपने सुना प्रदीप अरोड़ा की आवाज़ में था, मकम कनाडा से, बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो। तो अब मैं चाहूँगी एक भूला बिसरा गीत आपकी नज़र करूँ। मैं हूँ सीमा सरगम, ऑल द वे फ्रॉम स्लाव। तो उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको पसंद आएगा, तुम्हारी आरज़ू में।

0: Hello friends, my name is Rahi Baines and I've come to remind you to listen to my radio show Kinare Kinare every Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. As usual, there is loads of music, masti and manoranjan for you. The program includes chutkle, funny poems and skits, Bollywood biographies, birthday bash whereby I mention the names of all my Facebook friends who had their birthdays in the last 7 days, Zara Hatke, which is off the beaten track pieces of musical items, and a lot more. So see you next Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. here on Awaaz FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM, मैं उसीमा सरगम। और अभी जो नगमा आपने सुना, जी हाँ, वो मेरी आवाज़ में था और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप में भी हैं बहुत से लोग शौकीन गाने के, लेकिन अच्छा गाते हैं ये ज़रूरी है, और तो आप अपने गीत हम तक पहुँचाइए ऑन 07784691440 पे, जो कि MP3 पे होने चाहिए। अपने बारे में भी कुछ बताइए, तो इस तरह आप अपने गीत हम तक पहुँचाते रहिए ऑन 07784691440। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जितेंद्र कंबोज की आवाज़ में एक गीत सुनते हैं जो कि मिसी सागा ओंटोरियो से हैं, और उनका गीत है अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे। इंजॉय।

0: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
1: जी हाँ, ये है आवाज़ FM और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुना, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे, और ये थे जतिंदर कंपोज ऑल द वे फ्रॉम सिसागा ओंटारियो से। जी हाँ, ये है आवाज़ FM और आपके गाए हुए गीतों का ये प्रोग्राम होता है आवाज़ करियोकी क्लब, हर संडे 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे, और इसके अलावा आप रिपीट सुनते हैं वेनसडे मॉर्निंग 8 AM UK टाइम के मुताबिक। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, और जो गीत अभी आप सुनने जा रहे हैं ये है नरा सिंह राव ऑल द वे फ्रॉम सिकंदराबाद, और उनका गीत है चिकरी चिकरी।
2: वो हो ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला, वो हो ला ला ला ला ला ला ला ला ला।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: बेशक ये है आवाज़ एफएम और आप हमें सुनते हैं 99.8 एफएम साउथहैम्पटन से दुनिया भर में इंटरनेट पर अपने स्मार्टफोन पे। मैं हूँ सीमा सरगम और जी हाँ, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके गाए हुए गीतों का होता है। तो अभी जो गीत आपने सुना, बहुत ही धमाकेदार गीत था और परफॉर्मेंस भी उतना ही धमाकेदार था। तो ये थे नरा सिंह राव, ऑल द वे फ्रॉम सिकंदराबाद, चिकरी चिकरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा गुप्ता, जो बेडफोर्ड शहर की रहने वाली हैं, उनका एक गीत है राही बेंस के साथ, जो कि पोर्टसमथ के रहने वाले हैं। तो ये डुएट आ रहा है हमारे सामने, तो चलिए ये गीत हम सुनते हैं। सुन बलिए, शुक्रिया मेहरबानी।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
1: बेशक ये है आवाज FM, मैं हूँ सीमा सरगम और हमारा प्रोग्राम है आवाज करियोकी क्लब, जिसमें आपके गाये गीत हम शामिल करते हैं। और ये प्रोग्राम होता है हर संडे 6 बजे से लेके 8 बजे तक। तो ये प्रोग्राम आप सुनते हैं दुनिया भर में इंटरनेट पे और अपने स्मार्टफोन पे आप सुनते हैं। लेकिन अगर आप साउथहैम्पशायर विंचेस्टर के इलाकों में रहते हैं या पोर्टसमाउथ के इलाकों में रहते हैं तो DAB पे भी आप सुन पाते हैं इसे। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो गीत अभी आपने सुना ये थी पूजा गुप्ता ऑल द वे फ्रॉम बेडफोर्ड शाह, और उनका साथ दे रही थी राही बेंस ऑफ कोर्स ऑल द वे फ्रॉम पोर्टसमाउथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, संतोष मुरागे की आवाज़ में गीत सुनते हैं जो कि शहादा महाराष्ट्र से हैं और उनका गीत है जान जानी जनार्दन। इंजॉय कीजिएगा।

से टकराया, हीरो को गुस्सा आया, यारों का मियार दुश्मनों का दुश्मन मस्त दनादन आया, यारों का मियार दुश्मनों का दुश्मन मस्त दनादन।

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: Hello, there's a big fire in the garden center in Hammersworth.
3: I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
8: We need a new jingle, yeah. What's better than that?

0: every Saturday at 5. It's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Don't stop, never give up. Hold your head high and reach the top.
5: Hours FM. 99.8. Hours FM.
4: Don't stop, never give up.
6: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.
7: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
8: Radio, the medium that's now large.
0: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
9: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
10: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
11: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
12: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए hantsfire.gov.uk विजिट करें।
13: माय नेम इज हीरा सिंह एंड आई हैव माय सन बर्थडे टुडे एंड आई सेड माय फॉर माय सन दिस सॉन्ग फॉर नुसरत फतेह अली खान माही वे तेनू याद करा माही वे तेनू याद करा नुसरत अली खान साहब थैंक यू
0: Southampton's Community Radio, Hours FM.

0: Hello, there's a big fire in the end of the garden center in Hammersworth.
1: Now I can see a massive black plume of smoke.
2: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
3: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
5: आवाज एफएम लोकल रेडियो, communities making waves, turning the tide on isolation.

0: From Merriott to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours FM.
1: Hello, there's a big fire in the garden centre in Hammersley.
2: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
3: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
4: All right, no problem. We're on the way.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
2: I can see a massive black plume of smoke.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए hantsfire.gov.uk विजिट करें।
6: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's.
7: Hello, hi, it's Sati. I want to dedicate a song and also I want to sing on your radio.
8: So here we go. So share with Santi. Sanu dekh ke mandir sari sardi. Jodi jadon share with Santi. Sanu dekh ke mandir sari sardi. Jodi jadon lagi arat kehni. Kand kithi alakaya vada kehni. ਚੋਰੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਕੇਨੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਕਾਇਆ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨ ਵਰ ਕੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਰੇ ਦਿਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨ ਵਰ ਕੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਰੇ ਦਿਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ
7: Patty, thank you. Bye.
0: Southampton's Community Radio, Hours FM.

0: FM are proud to support local radio. Love your place, whatever place you love. At home, the park, in the local pub. We want to know about it. Celebrate with us. Love your place. Love your local radio.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਨਾ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ

0: Hop on, rewind, repeat. One wild ride. Retro Rickshaw, every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसानात से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
4: हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती है। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।

तलाश जिसकी तलाश वो है कहाँ ढूंढा जहाँ मेरी आरज़ू मेरी जुस्तजू मैं कौन हूँ और हूँ कहाँ।

0: मेरी जालियां और तेज दम भरती हुई यादों।
1: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती है। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
2: Hello, there's a big fire in the end of Garden Center. Now look,
3: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden
3: centre. I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away.
6: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए hantsfire.gov.uk विजिट करें।
7: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text RADIO to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
8: How do you say it? A was or a waz?

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे